आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मानु वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आईया सब जो ता गाव हो हरि केरा मन जनी वसाया कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारू हूं करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल

दसवें गोबिंद सिंह गुर नमो चरण अरबिंद जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग।

सेव करी सो गुरु की कृपा नाल गुरु का हुक्म मन के सेवा की। सेव करी पल चसा ना बिछड़ा, एक पल भी एक चसा आखा दे खुलन जिन्ना समा भी नहीं बिछड़े, नहीं बिछड़न मन करता। सो गुरु की ऐसी कृपा हुई है, सेव करी पल चसा ना बिछड़ा जन नानक दास तुम्हारे जियो। हे वाहिगुरु जी, असी तुहाडे दास हाँ, तुहाडे तो एक चसा एक पल भी विछड़ नहीं सकते। सेवा विच लगे हाँ तो सारी जिंदगी वाहिगुरु कृपा करे, सेवा का माण ही

ना ही साध संगत दी भगत जी का नाम लिखा है। सो एदा सरलेख जेड़ा पिछे तो चलदा आ रहा है ओही सरलेख रहेगा। राग भैरों दे विच भगत नामदेव जी की बाणी चल रही है पर उथे साध संगत जी घर केड़ा चल रहा है दूजा घर। फिर इथे आण के घर दी दूजे घर दी विशेषता दसी है पर यह शब्द जेड़े सारे भगत नामदेव जी दे आउणगे। सो इथे अपने कोलों बाणी भगत नामदेव जी जां कुछ ऐसा शब्द नहीं उचारण करना। गरीब नवाज जिया ने दूजे घर का सरलेख रख के शब्द अगला आरंभ हो रहा है। आप जी नू इथों पता लगेगा जिवें साध संगत जी ये 28 पदियां दा शब्द है 28:1-10 इस तों 28 तों भाव है 28 पदे ते एक शब्द हो गया घर दूजे दा। हुण दूजे कुल शब्द इथों तक 10 हो गए। सो इस करके जिन्ने भगत नामदेव जी दे आए हन हुण तक भगत बाणी दे विच उन्हां दी गिणती भगत नामदेव जी दी ते दूसरे भगतां दी वी जिहड़ी बाणी है पिछों जिथों भगत बाणी प्रारंभ होई उन्हां दी गिणती इत्थे 10 है। दूजे घर दा सरलेख दे के नवें शब्द दी अगे प्रारंभता हो रही है। सो इस तरह सरलेख जिवें दिता गया एवें ही पढ़ना जी।

इस प्रकार दे वचन कहे। पंडित कहन लगा कि कृष्ण रामचंद्र इत आदिक अवतार जे उन्हां दे बारे तुसी कहो तां ओ भी नासवंत हन। पहले समय दे विच ओ दिखाई दे रहे सन, उन्हां दे दर्शन कीते ने अनेकां जीवां ने, पर हुण कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। इस दे अनुसार परमात्मा नूं मिलन दी इच्छा किवें पूरी हो सकती है? तां भगत रविदास जी ने बड़े सुंदर पावन पवित्र बचन उचारण कीते हन। आओ परमात्मा दी वडियाई ओदी उस्तत अते भगती दे संबंध दे विच पावन पवित्र बचन उचारण कीते सुनिए जी।

0: बहुत विस्थार
1: रुपे की आकारा
0: बहुत विस्थार।
1: सात संगत जीओ, सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी ने यह जो शब्द उचारण किया एक पंडित दे प्रथाए उचारण किया है। वह पंडित करतारपुर साहिब विखे सतगुरु जी के दर्शन करने वास्ते आया। सतगुरु जी के दर्शन किते, सतगुरु जी कहन लगे कि भाई तेरे नाल फिर विचारां करांगे, चर्चा तेरे नाल फिर होवेगी। पहला गुरु के लंगर दे विचों प्रशादा छक सतगुरु जी नूं दोने हाथ जोड़ के बेनती की कि सतगुरु जी मैं आप प्रशादा तैयार करके छकदा हाँ, तुहाडे लंगर दे विच उच्चियां नीवियां जातां वाले सारे इकट्ठे बैठ के छकदे ने, इस करके मैं पंडित हाँ उच्ची जात दा, तुहाडे लंगर दे विच मैं छक नहीं सकदा। सतगुरु जी कहन लगे कि भाई सुक्की रस्त

बिन भगती नहीं सतगुर पाईऐ, बिन भागा नहीं भगत हरी, बिन भागा सतसंग न पाईऐ, कर्म मिलै हर नाम हरी, घट घट गुबत उपाय वेखै, प्रगट गुरमुख संत जना, हर हर करह सो हर रंग पीने, हर जल अमृत नाम मना, जिनका तख्त मिला वड्याई, गुरमुख से प्रधान किए, पारस भेट पए से पारस, नानक हार।

0: की वासना मन है करे, मन जिवे ना करना ओ अर्थ है मन है पोला उचार नहीं करना भारा करके, बिखिया की वासना मन है करे।
1: अपना भाणा आप करे, बसंत महला तीजा।

मानस तिन छे से धन वड्डे वड पूरे हर जन जिन हर धारियो हर उरछे हम ढींडे ढीम बहुत अत भारी हर धार कृपा प्रभ मिल छे जन नानक गुर पूरा पाया हर तूठे हम किए पतित पविछे बसंत हिंडोल महल्ला चौथा मेरा एक खिन मनुआ रह ना सके नित नित हर हर नाम रस गीदे ज्यो बारिक रसक परयो थन माता थन काढ़े बिलल बिलीदे गोविंद जीओ मेरे मन तन नाम हर बीदे वड़े भाग गुर सतगुर पाया विच काया नगर हर सीधे रहाओ जन के सास सास है जेते हर बिरह प्रभु हर बीदे ज्यो जल कमल प्रीत अत भारी बिन जल देखे सुख लीदे जन जप्यो नाम निरंजन नर हर उपदेश गुरु हर प्रीदे जन्म जन्म की हम मैं मल निकसी हर अमृत हर जल नीदे हमरे कर्म ना बिचरहो ठाकुर तुम पैज रखो अपनी दे।

पुण्य सत संगत गुर की हर प्यारी मिल संगत हर रस पुण्य रहो सत संगत साध दया कर मिलो शरणागत साधु पंज हम डुबदे पाथर काढ़ ले हो प्रभ तुम दीन दयाल दुख पंज हरि उस्तत धार हो हृदय अंतर स्वामी सत संगत मिल बुद्ध लंज हर नामे हम प्रीत लगानी हम हर विटो कुम वंज जन के पूर मनोरथ हर प्रभ हर नाम देव हर लंज जन नानक मन तन आनंद भया है गुरमंत्र दियो हर पंज

0: फूल लगे फल रतन भांत, तृप्त अघाने हर गुण है गाए, जन नानक हर हर हर त्याय। बसंत महला
1: संगत जीओ, एक समय सिखा ने सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी दे पास बेनती की कि सतगुरु जीओ जिहड़ी होली है उहदा दिन है, होली मना रहे ने लोग, गुरसिखा नू किस प्रकार होली मनाउणी चाहीदी है। सतगुरु जी ने शब्द दे विच बेअंत वार बड़े सुंदर बचन उचारण किए ने कि होली कीनी संत सेव, रंग लागा अत लाल देव, सतगुर सेवाओ कर नमस्कार। उपर शुरू तो ही ये शब्द दे विच सतगुरु जी ने बड़े सुंदर बचन उचारण किए ने, जो इस प्रकार गुरमत दृढ़ करवाई है सतगुरु जी ने कि लोकां वांगू नहीं जिवें रंग पाउणा जां कई गंदगी भी उपर पाउंदे हन, पर नहीं, सतगुरु जी कहिंदे कि संत जनां दी सेवा करके परमात्मा दी बंदगी करके ही होली मनाई जांदी है। हां जी।

बहुत सह मोहे। मेरे प्रीतम प्राण आधार मान, जियो प्राण सब तेरो तान रहाओ। जाको खोज है सुर नर देव, मुन जन सेख ना लह है पेव। जागी गत मित कही ना जाए, घट घट घट घट रहया समाए। जाके भगत आनंद मै, जाके भगत को नाही खै। जाके भगत को नाही पै, जाके

0: देख फूल फूल फूले अहं त्याग त्यागे, त्याग ते विश्राम ला के त्यागे अगे पढ़ना।
1: चरण कमल पागे तुम मिलहो प्रभ सुभागे, हर चेत मन मेरे रहाओ सगन बास कूले।
0: सगन पाठ ही करना, संगन नहीं कर जाना, सगन बास कूले।
1: एक रहे सूक कठूले,
0: छोटियां जदों पंक्तियां होण ना साध संगत जी उदो बेनती है विशेष तौर ते विश्राम दा जरूर ध्यान रखना। छोटियां जदों पंक्तियां आ जांदियां फिर असीं विश्राम स्किप करदे आं, छड्डदे आं, विश्राम नहीं लाउंदे, पर विश्राम तकरीबन पंक्तियां दे विच हुंदा। सो विश्राम दा ध्यान, जमक ठमक दा ध्यान ज्यादा रखना जदों पंक्तियां छोटियां आ जाण। लमेरियां ज्यादियां लमेरियां पंक्तियां च वधेरे आ जांदियां, जमकां ठमकां विश्राम ते छोटियां पंक्तियां दे विच असीं सीधा ही साह छड्डे बिना पढ़दे आं फिर स्पष्ट नहीं हुंदा। सो ज्ञानी जी बड़े प्यार सहित विश्राम लगा रहे, आप जी नूं बेनती है ध्यान सहित विश्रामां नूं सरवण करना।
1: बस।

तू समरथ स्वामी मेरा, हाउ क्या जाना तेरी पूजा, तेरा महल अगोचर मेरे प्यारे, बिखम तेरा है भाणा, कहो नानक टह पया द्वारे, राख ले वह मुग्ध अजाना, बसंत हिंडोल महला पंजवा, मूल न बूझा।

परसना साकै गही भगत भगवान जन्म जन्म का संसा चूका रतन नाम जब पाया त्रिसना सकल विनाशी मन ते निज सुख मा

0: ਇਹ ਤੇ ਸੋਚਣ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੰਨਣ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਇਹ ਦੱਸ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਂ ਹੈ ਪਿਤਾ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਖਿੜ ਖਿੜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਵੀ ਪਈਆਂ। ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਸੁਦਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਵਾਕਈ ਪਗਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮਾਂ। ਫਿਰ ਸੋਚੀ ਪੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਮੈਂ ਐਸਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਾਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਰੀਕ, ਤੀਸਰੇ ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ, ਔਰ ਚੌਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਮਮਤਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਆ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੱਸੋ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਰਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਮਤ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਸਤ ਭਾਈ ਕਰ ਇਹ ਵਿਸੇਖ। ਮੇਰੀ ਜੋ ਮਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਦਮ ਕਦਮ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਯਤੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਜਾਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੂੰ ਯਤੀਮ ਨਾ ਆਖੋ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਤੀਮ ਉਸਨੂੰ ਆਖੋ ਜਿਸ ਦੀ ਮਤ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਜਾਏ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੋਕਰਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਬਚ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੀ ਮਤ ਮਰ ਜਾਏ ਉਹ ਤੇ ਕਦਮ ਕਦਮ 'ਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧੀਹੀਨ ਮਨੁੱਖ ਕਦਮ ਕਦਮ 'ਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗੀ ਮਤ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ, ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰ, ਉੱਤਮ ਫਿਲਸਫਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਚਿੰਤਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਮਤ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮਮਤਾ ਡੁਲਾਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਮਤ ਇਹ ਮਾਂ ਹੋਈ, ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਤਨਾ ਸਾਰਾ ਅਨਰਥ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਮਤ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਮਤ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਮਤ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਅਨਰਥ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਇਆ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਐਸੇ ਯਤੀਮ ਨੇ, ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਤੀਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਮਤ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੰਤੋਖ, ਇਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦਾ। ਲੋਭ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਜੈਸਾ ਹੈ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਤੋਖੀ ਦੀ ਭਾਵ ਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਜੈਸਾ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਲੋਭੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਜੈਸਾ ਹੈ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਜੈਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ, ਜੈਸੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੇਚੈਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਭੀ ਬੰਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਵੀ ਤੜਪਦਾ ਹੈ, ਸੰਤੋਖੀ ਬੰਦਾ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧਰਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਨੇ। ਸੰਤੋਖੀ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਲੋਭੀ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੰਤੋਖ। ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਚੇਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਫਾਤਿਹ ਆਜ਼ਮ ਸਿਕੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਅਬੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸਿੰਧ ਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਮਸਤ ਫਕੀਰ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰੇਤ ਵਿੱਚ। ਸੈਨਾ ਸਾਰੀ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਟੁਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਆਪ ਸੀ। ਉਸ ਮਸਤ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਕੰਦਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਰਿਹਾ। ਨੇੜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ, ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਗਮਨ ਕੀਤਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਚੱਲਾਂ, ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸ ਜਦ ਤੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੈਠਣਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਫਤਿਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵੀ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲੇ ਸਵਾਲ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਮਾਧਾਨ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਫਕੀਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕਲਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵੀ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ। ਤਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਫਤਿਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਸੁਸਤ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਫਤਿਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ। ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਕੇ ਸਿਕੰਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਤਿਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਚ ਖਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਤਿਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਸੋਚਦਾ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖਤਮ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਫਕੀਰ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ, ਅੱਛਾ ਸਿਕੰਦਰ ਇਹ ਦੱਸ, ਜਦ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਖਾਬੋ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਿਕੰਦਰ, ਜਦ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਕੰਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਯੂਨਾਨ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ 100 ਪੁਆੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰੇਂਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਲੇਟੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆ ਇੱਥੇ ਲੇਟ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਚਾਂ, ਤੂੰ 100 ਪੁਆੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਚਾਂ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਸਵੈਮ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋਇਆ ਸਿਕੰਦਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਸਾਰੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਆਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਰਾਮ ਉਸੇ ਦਿਨ ਨਸੀਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਚਾਰ ਮਨੁੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਿਤਾ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਰਾਮ ਕਿੱਥੇ? ਭੱਜ ਦੌੜ ਹੈ ਆਰਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਭੱਜ ਦੌੜ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਵਕਤ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਵਕਤ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਸੰਤੋਖ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। मैं जिथे भी जाना है मैनू विश्राम दे च रखदा, आराम देंदा, सुकून देंदा। माता मत पिता संतोख, सत भाई कर एह विसेख। तो तृप्ता जी ने पूछया, नानक जी यह ते गल समझ दे च आ गई कि जो मत है, श्रेष्ठ मत है, यह थोड़ी मां है। जो संतोख है यह थोड़ा पिता है। पर परिवार विच सिर्फ मां बाप ते नहीं होंदे, पत्नी भी होंदी है। असी सुलखणी नाल थोड़ा विआह रचाया सी, थोड़े बच्चे भी हैं। जिहड़ा परिवार थोड़े नाल जांदा है, क्या उस दे च पत्नी है? क्या उस दे च बच्चे हैगे ने? साहिब कहिंदे ना हां। सतगुरु देव जी महाराज दा फरमान, सरम सुरत दोए ससुर भय, करणी कामण करमन लै, करणी भगती उच्चा इखलाक आचरण। ये भगती मेरी कामण है, मेरे नाल रहिंदी है, अठे पैर मेरे नाल रहिंदी। भगती रूपी कामण दा जन्म कित्थों होया? साहिब कहिंदे ने साहा, सरम सुरत दोए ससुर भय। शर्म मेहनत, सुरत स्याणप विचार, टिकाओ एकाग्रता। मेहनत रूपी सोहरा ते सुरत रूपी सस दे संजोग तो एक लड़की दा जन्म होया जिसका नां है भगती। साहिब कहिंदे ने ये मेरी कामण है, ये मेरी स्त्री है। इसका जिक्र गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी किया है, निज भगती सीलवंती नार, रूप अनूप पूरी आचार, जिच्चर वसी पिता के साथ, तिच्चर कंत बहु फिरे उदास, कर सेवा सतपुरुख मनाया, गुर आणी घर में ता सर्ब सुख पाया। भगती नू नार आख्या है साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी। कहिंदे ने ज्ञान पुरुष है, भगती स्त्री है। ज्ञान दा जन्म तर्क तो है, संशया तो है, भगती दा जन्म श्रद्धा तो है। इस वास्ते असी अक्सर देखते हाँ कि स्त्री जगत विच श्रद्धा प्रधान होंदी है, पुरुष जगत विच ज्ञान प्रधान होंदा है। पर श्रद्धा तो हीणा ज्ञान अधूरा है और ज्ञान तो हीणी भगती भी अधूरी है। दोहां ने संपूर्ण होना है। भारत दे ऋषि मुनिया ने के चंगे बोल बोले ने कि पुरुष भी अर्ध अंग है, स्त्री भी अर्ध अंग है, दोवें अर्ध अंग ने। शरीर करके आकार करके ते ये अर्ध अंग है, पर विचार करके सूक्ष्म देही करके भी अर्ध अंग है। जितने चिर तक पुरुष नू श्रद्धा ना मिल जाए, पुरुष अधूरा ही रहिंदा है। तर्क ते नास्तिकता दे जन्म दाते पुरुष ने, और अंधविश्वास से भटकते हुए जिहड़े मनुख ने, कहिंदे ने इसना दे तादाद स्त्रियां दी ज्यादा होवे, क्योंकि श्रद्धा है ज्ञान नहीं, पुरुष कोल ज्ञान है श्रद्धा नहीं, दोवें अधूरे रह जांदे। ज्ञान अख है, श्रद्धा पैर है। हुण चलण वास्ते पैर होवन, वेखण वास्ते अख ना होवे, मनुख भटक जाएगा। वेखण वास्ते अख होवे, चलण वास्ते पैर ना होवन, तां वी पहुंचना बहुत औखा है, बहुत औखा है। ज्ञान पुरुष है, भगती स्त्री है। जद किसे मनुख दे अंदर, चाहे वह स्त्री है ते चाहे वह पुरुष है, ज्ञान ते भगती दोहां दा प्रवेश हो जाए, दोहां दा अवतरण हो जाए, वह मनुख पूर्ण पुरख हो जाता है। चाहे वह स्त्री है चाहे पुरुष है, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान भी है, उसके अंदर भगती भी है, उसके अंदर श्रद्धा भी है। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने माता मत मत विचार उज्ज्वल मत ज्ञान का पहले जिक्र ही कर दिता है। शर्म सुरत दोए ससुर भय, करणी कामण करमण लै। मेहनत मुशक्कत ए मेरा सौरा है, भाव मैनू अपनी मेहनत ते भरोसा है, मैनू अपनी मुशक्कत ते भरोसा है। गुरु नानक दी दुनिया सुस्त नहीं है, आप मुशक्कत नू बड़ी प्रधानता देंदे ने। उदम करेंदिया जीव तू, कमावदिया सुख भुंच, ध्यावदिया तू प्रभु मिल, नानक उतरी चिंत। जिवें उदम करके ही धन कमाईदा है, उद्यम करके ही धर्म कमाईदा है। मुफ्त देश धन नहीं मिलता, मुफ्त देश धर्म भी नहीं मिलता। हो सकता है धन मुफ्त देश भी मिल जाए, धर्म कतई मुफ्त देश नहीं मिलता, कमाना पैंदा है, लाजमी कमाना पैंदा है। असी देखते हैं पिता का कमाया हुआ धन पुत्र नू मिल जाता है, कई दफा दादे का कमाया हुआ धन पोतरे नू मिल जाता है, पर धर्म ते स्वयं कमाना पैंदा है, किसी का कमाया हुआ नहीं मिल सकता। इस वास्ते संसार विच धन वधदा जा रहा है, धर्म घटदा जा रहा है, क्योंकि धन ते दूसरे का भी मिल सकता है। प्यो का धन पुत्र नूं मिल गया, दादे का धन पोतरे नूं मिल गया। धन की लाटरी भी निकल आउंदी है, धर्म की लाटरी नहीं निकलती। धर्म ते स्वयं कमाना पैंदा, आप कमाना पैंदा, मेहनत करके कमाना पैंदा, और यह निजी संपदा खुद निजी हत्थां नाल संग्रह करनी पैंदी है। इस वास्ते संसार विच धन वधदा जा रहा है और दिन ब दिन धर्म घटता जा रहा है। इत्थे धर्म जो है प्यो पुत्र नूं नहीं दे सकदा और पुत्र भी पिता नूं नहीं दे सकदा। धन ऐसा है कि पुत्र ने कमाया वह पिता की झोली च पा सकदा है और पिता ने कमाया वह पुत्र दे हत्थां च दे सकदा है, पर धर्म स्वयं कमाना पैंदा है। प्यो पुत्र नूं नहीं दे सकदा, पुत्र पिता नूं नहीं दे सकदा। इसका इतिहासक सबूत है। गुरु रामदास जी महाराज की बड़ी कोशिश सी कि मेरा जिहड़ा वड्डा पुत्र है पृथ्वी चंद, यह भी नाम का रसिया बने, यह भी बाणी पढ़े, यह भी परमात्मा नाल जुड़े, पर नहीं, वह झगड़दा ही रहा, वह नास्तिक ही रहा, वह कलेश पांदा रहा। वह संबंध च महाराज के बोल भी ने, काहे पूत जगरत हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो तिन सौ जगरत पाप। वह लड़दा ही रहा, झगड़दा रहा, इच्छा ख्वाहिश होने के बावजूद भी गुरु रामदास जी महाराज की पृथ्वी चंद भगत ना बन सके, संत ना बन सके, धर्मी ना बन सके। इत्थे पिता पुत्र की झोली च नहीं पा सके। दूसरे पासे असी देखते हां प्रहलाद की बड़ी कोशिश सी कि जिहड़ा राम का रस मेरे कोल है, जो धर्म मेरे कोल है, वह मेरे बापू कोल भी होवे, वह मेरे पिता कोल भी होवे, पर नहीं, हरनाकश इस दौलत तो वांझा ही रह गया। जो नाम की दौलत प्रहलाद कोल सी, वह हरनाकश कोल नहीं सी। चाहते सन प्रहलाद कि मेरे बापू कोल भी होवे, पर गल नहीं बनी। चाहते सन गुरु रामदास जी महाराज मेरे पुत्र कोल भी होवे, पर गल ना बनी। इत्थे एक दूजे नूं यह दौलत दित्ती नहीं जा सकती, स्वयं कमाणी पैंदी है, आप कमाणी पैंदी है। मनुख उसे दिन पूर्ण बनता है, धार्मिक तौर पर उसे दिन धनवान बनता है, जिस दिन इसके कुल ज्ञान भी होवे और श्रद्धा भी होवे, अंदरों पूर्ण हो जाता है। तो साहब कहते हैं, मेहनत मुशक्कत यह मेरा सौरा, सुरत मेरी सस है, इन्हों के संयोग तो एक लड़की का जन्म होया जिसका ना है भगती। साहब कहते वह मेरी कामण है, करनी कामण है कर मन लै। तो तृप्ता जी बोल उठे, नानक जी सुलखणी दे नाल व्याह असी कराया सी, भगती रूपी कामण नाल व्याह किसने कराया और कदों होया? गुरु नानक इस दे संबंध विच भी दसदे ने। साहिब कहिंदे ने, साहा संजोग व्याह विंजोग, सत पुरशां दा जो संजोग होया, जो सतसंग नसीब होए, ये मेरी मंगनी होई सी। सत पुरशां दी सोबत विच मैं बैठा तां भगती नाल रिश्ता जुड़िया, सतसंग दा संजोग मेरी मंगनी होई सी। ते जद विकारां दा वियोग हो गया, दुराचार निकल गए, दुष्कर्म ढह गए, तां मेरा व्याह हो गया, ये मेरा व्याह हो गया। दुष्कर्म दे खत्म होंदिया, गलत विचारां दे खत्म होंदिया, गलत कर्म दे मिटदिया ही भगती प्रगट हो गई, भगती मैनू मिल गई। साहा संजोग व्याह विजोग, सतपुरशां दे संजोग नाल रिश्ता जुड़िया सी। गुलिस्तान विच इक बोल बड़ा कीमती है, ईरान दे प्रसिद्ध संत शेख सादी दी ए महान रचना है गुलिस्तान। कहिंदे ने वो एक दिन बैठे सन, हाथ धो रहे सन मिट्टी दे नाल, कोल बैठे उन्हां दे शागिर्द वो पुछदे ने, उस्ताद जी थोड़े चेहरे ते हर वक्त मस्ती रहिंदी है, रौनक रहिंदी है, तुसीं खुश रहिंदे हो, आनंद विच रहिंदे हो, जबकि अठे पैर अपने आप नूं खुश रखना बड़ी औखी गल है, पर तुसी अठे पैर खुश रहिंदे हो, अठे पैर प्रसन्न रहिंदे हो, अठे पैर खेड़े ते मस्ती विच रहिंदे हो, आखिर थोड़े कोल ऐसी की चीज है, सानू भी ये राज दसो। तो कहिंदे ने, जो मिट्टी हत्थां दे सी शेख सादी दे, उस मिट्टी नूं आप सूंघण लगदे, काफी देर तक सूंघदे रहे। शागिर्द कहिंदे रहे, उस्ताद जी सानू दसो कि थोड़े कोल इतनी प्रसन्नता किस तरह है, इतना खेड़ा किस तरह है। शेख सादी कहण लगे, थोड़ा सवाल मैं मिट्टी ते कीता, मिट्टी बोलेगी मैं दसांगा। हैरान ने विद्यार्थी पर बड़ी सुंदर नज़म दे राही विद्यार्थियों नूं समझाया है ईरान देश प्रसिद्ध संत शेख सादी ने। गिले खुशबू दर हुमाम रोजे रसीद अज दस्ते महबूब बदस्तम। कहिंदा है कि एक दिन घरवाली दे हथों मैनू खुशबूदार मिट्टी हथ धोण वास्ते प्राप्त होई। गुफ्तम तू मुश्की अंबर या अंबेरी कि अज खुशबू दिलां वीजे तो मस्तम। शेख सादी साहब कहिंदे मैं बोलिया उस मिट्टी नूं आखिया दस तू मुश्की है अंबर है अंबेरी है आया कीड़ा सेंट है कीड़ा अतर है तू क्योंकि तेरी सुगंधी ने मेरे दिल दिमाग नूं मुअत्तर कर दिता ऐ ते तू मिट्टी। मुश्की अंबर अंबेरी गजनी काबुल देच जो अतर वरते जाते ने उन्होंने नाम ने प्राचीन समय तो। गुफ्तम तू मुश्की अंबर या अंबेरी कि अज खुशबू दिलां वीजे तो मस्तम। दस्ते सही तो मुश्की है अंबर है अंबेरी है कौन है क्योंकि तेरी सुगंधी ने मेरे दिल दिमाग नूं मुअत्तर कर दिता। शेख सादी लिख देन मिट्टी बोली बाओ गुफ्ता मन गिले ना चीज बूदम वलेकिन मुद्दते बागुल निशस्तम। मिट्टी बोली ऐ शेख ऐ फकीर साई मैं एक नाचीज मिट्टी हाँ बाओ गुफ्ता मन गिले नाचीज बूदम गिले मिट्टी मैं एक नाचीज मिट्टी हाँ वलेकिन मुद्दते बागुल निशस्तम पर मैं एक खास समय तक फुल्लां दे कोल रही हाँ फुल्लां दी जड़ां दे विच रही हाँ फुल्लां दी संगत कीती है जमाले हम नशे दरमन असर कर दे वगरना मन हमा खाकम के हस्तम। फुल्लां दी संगत करके फुल्लां दी नेड़ करके मेरे विच भी सुगंधी आ गई है महक आ गई है वरना मैं ते एक नाचीज मिट्टी हाँ। तो शेख सादी साहब कहन लगे मैं एक नाचीज मिट्टी दा पुतला सत पुरशां दी सोहबत करके ये गुणा दी सुगंधी मेरे अंदर पैदा हुई है ये जो महक है ये मेरी अपनी नहीं किसे तो मिली है ये जो चमक दमक मेरे कोल है ये मेरी अपनी नहीं मैनू किसे तो मिली है। तो साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान सत पुरशां दी जो सोहबत नसीब हुई ये मेरी मंगनी हुई और संसारिक विकारां दा जो त्याग हो गया ये मेरा विआह होया। तो तृप्ता जी ने पूछ लिया पुत्र नानक इस भगती रूपी कामण ने किसी संतत नूं भी जन्म दिता है थोड़ी कोई औलाद भी है थोड़ा कोई बच्चा भी है क्योंकि परिवार बच्चे तो बिना भी तो अधूर है। साहब कहिंदे हां सच संतत कहो नानक जोग इस भगती रूपी कामण ने सच रूपी पुत्र नूं जन्म दिता है ज्ञान रूपी पुत्र नूं जन्म दिता है ईश्वर नूं जन्म दिता है। हैरान हो गए कि ईश्वर दे नाम भगत लोग रखते हैं हुण मां बाप बच्चियां दे नाम रखते ने पर भगत रब दे नाम रखते जो जगत पिता ये गल उल्टी है। मां बाप बच्चियां नूं जन्म दे देन भगत रब नूं जन्म दे देन साधु सत्तम जाणो नानक प्रीत कारणे। गुरु अर्जन देव जी महाराज का कहना अगर साधु ते भगत ना होवन तो ईश्वर दी होंद का कोई पता भी नहीं चलेगा ये ओ ही प्रगट करते हैं उसकी होंद नूं उसकी असलीयत नूं उसकी वास्तविकता नूं जगत दे सामने रखते हैं। तो सच रूपी पुत्र नूं जन्म दिता है ज्ञान रूपी पुत्र नूं जन्म दिता है कहो नानक जोग मैं इसे ही परिवार जोगा। मुख्तसर इस परिवार की तफसील गुरु नानक का कहना है जिथे सत्संग होवेगा उथे चंगी मत होवेगी जिथे चंगी मत होवेगी उथे संतोख होवेगा जिथे संतोख होवेगा उथे अपनी मेहनत ते भरोसा होवेगा जिथे अपनी मेहनत ते ही भरोसा होवेगा प्रालभत ते भरोसा होवेगा उथे सुरत देच एकाग्रता होवेगी जिथे सुरत देच एकाग्रता होवेगी उथे विकारां दा त्याग होवेगा जिथे विकारां दा त्याग होवेगा उथे भगती होवेगी और जिथे भगती होवेगी उथे ज्ञान होवेगा और जिथे ज्ञान होवेगा उथे परमात्मा आप होवेगा।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio Ferndale, Washington.

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन के जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई ता दुखी है, जे औलाद है ता हुकम विच नहीं है ओ ता दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन। इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना ता मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी, एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए ता फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी ता है ही ऐसी।

0: तन्मय होए जाए बसवंत
1: सेना बदे आप अहंकारी
0: धर्मराज तिस करे खुआरी
1: गुर प्रसाद जा का मिटे अभिमान
0: सोजन नानक दरगाह परवान
1: कोट कर्म करे हों तारी
0: शरण पावे सकले बरथारे
1: अनक तपस्या करे अहंकार
0: नरक स्वर्ग फिर अवतार
1: अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे
0: हर दरगाह को कैसे गवे
1: आप को जो भला कहावे
0: सिर भलाई निकट में आवे
1: सर की रेन जा का मन होए
0: कहो नानक ताके निर्मल सोए
1: जब लग जाने मुझते कश होए
0: जब इस को सुख नाही कोए
1: जब यह जाने मैं किस करता
0: गर्व जोन में फिरता
1: जब धारे को बैरी मीत
0: जब लग नेचर नाही चीत
1: जब लग मोह मगन संग माए
0: तब लग धर्म राय देश जाए
1: तब कृपा से बंधन टूटे
0: गुरु पर साधना अनक हो छुटे
1: सहस कटे लख कोट पावे
0: रत्न आवे माया पाछे पावे
1: अनक भोग विखिया के करे
0: नैत बतावे खप खप मरे
1: बिना संतोख नहीं को राजे
0: अपन मनोरथ फिर से सब काजे
1: नाम रंग सर्व सुख होए
0: प्रभागी किसे प्राप्त होए
1: कर्ण करावन आपे आप
0: सदा सदा नानक हर जाप
1: कर्ण करावन करना हार
0: इसके हाथ कहां बीच
1: जैसी दृष्ट करे तैसा होए
0: आपे आप प्रभ सोए
1: जो किस पीनो सो अपना रंग
0: तब ते दूर सब हूँ कै संग
1: दूजा देख करे विवेक
0: आपे एका पै अनेक
1: मरे न पिनसै आवे न जाए
0: नानक सभी रह समाए
1: आप उपदेशै समझे आप
0: आपे रचिया सब के साथ
1: आप पीनो आपन विस्तार
0: सब कुछ उसका हो करने हार
1: पोस्ते पिन कहो किस होए
0: आंत अंतर एक सोए
1: अपने चलित आप करने हार
0: गौत करे रंग अपार
1: मन में आप मन अपने माहे
0: नानक कीमत कह न जाए
1: सत सत सत प्रभु स्वामी
0: गुर प्रसाद के नैवखियानी
1: सच सच सत सब कीना
0: कोट मदय के विरले चीना
1: भला भला भला तेरा रूप
0: अत सुंदर अपार अनूप
1: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी
0: कटकट सुनी सर उन वखियानी
1: पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत
0: नाम जपै नानक मन प्रीत श्लोक
1: संत सरन जो जन पर सो जन उदर नहार
0: संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी
1: संत का दुखन आर जा कटे
0: संत का दुखन जमते नहीं छुटे
1: संत का दुखन सुख सब जाए
0: संत का दुखन नरक में पाए
1: संत का दुखन मत होए मलीन
0: संत का दुखन शोभा देहीन
1: संत के हथे को रखे न कोई
0: संत का दुखन थान भ्रष्ट होए
1: संत कृपाल कृपा जे करे
0: नानक संत संग निंदक भीतर
1: संत के दुखन ते मुख पवे
0: संतन का दुखन काग ज्यो लवे
1: संतन का दुखन सर्प जोन पाए
0: संत का दुखन त्रिगत जोन करमाए
1: संतन का दुखन तृष्णा मह जले
0: संत का दुखन सब को छले
1: संत का दुखन तेज सब जाए
0: संत का दुखन नीच निचाए
1: संत दुखी का थाओ को नाही
0: नानक संत भावे ता ए पी कत पाए
1: संत का निंदक महा अतताई
0: संत का निंदक कन टिकन न पाए
1: संत का निंदक महा हत्यारा
0: संत का निंदक परमेश्वर मारा
1: संत का निंदक राज ते हीन
0: संत का निंदक दुखिया अरदीन
1: संत के निंदक को सर्व रोग
0: संत के निंदक को सदा बिजोग
1: संत के निंदा दुख में दुख
0: नानक संत भावे ता उसका भी होए मोख
1: संत का दुखी सदा पवित्र
0: संत का दुखी किसे का नहीं मित
1: संत के दुखी को डान लग
0: संत के दुखी को सब त्याग
1: संत का दुखी महा अहंकारी
0: संत का दुखी सदा बेकारी
1: संत का दुखी जन्म मरे
0: संत की दुख न सुख ते तरह
1: संत के दुखी को ना ही ठाओ
0: नानक संत भावे ता लय मिलाए
1: संत का दुखी अद बीज ते टूटे
0: संत का दुखी किते काज न पहुंचे
1: संत के दुखी को उदयान परमाई है
0: संत का दुखी उजड़ पाई है
1: संत का दुखी अंतर ते थोथा
0: जो सास बिना मृत की लोथा
1: संत के दुखी की जड़ किस ना ही
0: अपन बीजा पे ही खाए
1: संत के दुखी को अवर न रखन हार
0: नानक संत भावे ता लय उबार
1: संत का दुखी यूं बिललाए
0: यूं जल बे हून मछली तड़फड़ाए
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजा
0: जो पावक ईंधन नहीं त्रापे
1: संत का दुखी छुटे अकेला
0: यूं बुआड़ तेरे खेत माहे दुहेला
1: संत का दुखी धर्म ते रहत
0: संत का दुखी सत मिथ्या कहत
1: कीर्तन दुखा तो रही पया
0: नानक जो तिस भावे सोई थिया
1: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए
0: संत के दुखी को दरगह मिले सजाए
1: संत का दुखी सदा सहकाइये
0: संत का दुखी ना मरे ना जिवाइये
1: संत के दुखी की पूजा न आसा
0: संत का दुखी उठ चले निराशा
1: संत के दुख न दृष्टि कोई
0: जैसा भाव है तैसा कोई होए
1: पया कीर्तन मिटे कोई
0: नानक जाने सच्चा सोए
1: सब कर तिसकी हो करने हार
0: सदा सदा तिसको नमस्कार
1: रब की उसत करहो दिन रात
0: तिसे त्यागो सास ग्रास
1: सब कछ वर्तै तिसका किया
0: जैसा करे तैसा को थिया
1: अपना खेला करने हार
0: दूसर कौन कहे विचार
1: जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे
0: वडपा की नानक जन से श्लोक
1: तजो सियान पुसुर जन हो सिमरहो हर हर राय
0: एकास हर मन रखो नानक दुख परम पौ जाए अष्टपदी
1: मनुख की टेक बिरथी सब जान
0: जीवन पौ एक है भगवान
1: जिसके दिया रह अगाए
0: और न तृष्णा लागे आए
1: मारे रख एको आप
0: मानक कक्ष ना ही हाथ
1: इसका हुक्म भू सुख होए
0: इसका नाम रख कंठ परोए
1: सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए
0: नानक बिघन न लागे कोए
1: उसत मन में कर निरंकार
0: मन मेरे सत व्यवहार
1: निर्मल रसना अमृत पियो
0: सदा सहेला कर ले जियो
1: नैनो बेठा पुरकार रंग
0: सास ਸੰਗ ਬਿਨ ਸਹਿ ਸਭ ਸੰਗ
1: ਚਲੋ ਮਾਰਗ।

नमो सर्माने समस्ते नदाने नमो देव देवे भेखे भेवे नमो काल काले नमो सर पाले नमो सर्व गावणे नमो सर भावणे अनंगी अनाथे नरसंगी परमाथे नमो भान भाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो भान भाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूप परपंगी परमाथे समस्ते विभूते कलंकंग बिना ने कलंकी स्वरूप नमो राज राजेश्वरंग परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरंग परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरंग परम वृद्धे नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायण कुरूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवेशो धर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो सह सहंग नमो भूप भूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्टे इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सचदानंद सर्वंग प्रणासी अनूपे अरूपे समस्तोल निवासी सदा सिद्ध द बुद्ध द बृद्ध करता अदो उर्द अर्दंग अगंग उगहर्ता परम परम परमेश्वरंग परोच्छ पालंग सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालंग अछेदी अभेदी अनामंग अकामंग समस्तो पराजी समस्तस्तता।

आनंद स्वरूप है। नमो सर्वमाने समस्ते निधाने नमस्तवं नरनाथ है नमस्तवं परमाथ है नमस्तवं गंजे नमस्तवं पंजे नमस्तवं अकाले नमस्तवं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परम तानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्व दृसंग नमो सर्व कृसंग नमो सर्व रंगे त्रिभंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीज अखिज अभिज समस्तंग प्रसिज कृपालंग स्वरूप को कर्मंग प्रणासी सदा सर्वदा रिद सिद्धंग निवासी चारपट संत प्रसाद अमृत कर्म अमृत धर्म अखल जोगे अचल भोगे अचल राज अटल साज अखल धर्म अलख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भूता सर्वंग ज्योता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग

गोबिंद मुकंद उदारे पारे हरियं करियं नरनामे अकामे पुजंग प्रयात छंद चत्र चक्र करता चत्र चक्र हरता चत्र चक्र दाने चत्र चक्र जाने चत्र चक्र वर्ती चत्र चक्र परती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे

है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र दान है के सर्वत्र गावन है के सर्वत्र पावन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता है के सर्वत्र गंता के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज के सर्वत्र राज के सर्वत्र सुख के सर्वत्र पोख के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देश के सर्वत्र पेश के सर्वत्र मान सदैव प्रधान के सर्वत्र जाप के सर्वत्र ताप के सर्वत्र पान के सर्वत्र मान के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वंग काली में के परमंग फही में के आकल आला में के साहब कला में के हुसन वजू है तम मुल रुजू है हमेशल सलाम सलीख तमोदा में गनी मुल सकास्त गरीब मुल प्रस्त है

नम सूरज सूरज नम चंद्र चंद्र नम राज राजे नम इंद्र इंद्र नम अंधकारे नम तेज तेज नम बृंद बृंदे नम बीज बीजे नमो राज संग ताप संग सांत रूपे नमो परम तत्तं अतत्तं स्वरूपे।

नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तल निवासे निरकामंग बेपूते समस्तल स्वरूपे को कर्मंग प्रणासी सोतर्मंग बेपूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करिमल को निंदा समस्तल निवासी अजायब बिपूते गजायब गनी में हरियं करियं करिमल रही में चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पूते स्वयं पशुभंग।

पौन आहार जति जत तहर सब सब चार हजार कदेख श्री भगवान पाए श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख।

आयो सात कहो सब सुन लिहो सब जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो काहु लै पाहन पूज तरै काहु लै पाहन पूज

हमरे दुष्ट समय तुम कावहो आप तद मोहे बचावहो सुखी बस मोरो परवारा सेवक सिख सब करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिये सा बैरन को आज संगरिये पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा।

नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया अंतो न पाया कने तेरा अपना आप तू जान हे।

0: विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद रंगे फिर हैं जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे प्राणी।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड से।

तीर्थ नावै अर्चा पूजा अगरवास बेकार जोगी सुन ध्यावन जेते लख नाम करतार सुख मूर्त नाम निरंजन काया का आकार सतिया मन संत।

साहिब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू दे तिस मिले सच दतनी सच कमाया सतगुरु मिले सच पै जिनके हृदय सच बसाया मूर्ख सच न जानी मनमुखी जन्म गवाया।

योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है, खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है, सर्व शब्दं एक शब्द।

सो सेवक सेवा करे सो हुक्म नाय सी हुक्म ने होवे प्रवान ता खसमे का महल पाई सी खसमे पावे सो करे मन चुंदिया सो फल पाई सी ता धर के पेंदा।

जिते दाने अन्न के जिया बाजना कोए, पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोए, सूत क्यों कर रखी है सूत।

0: नहीं।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

0: वाहे गुरु जी की फतेह।
1: सतगुरु साहब जी ने बेअंत कृपा कीती है। अमृत गुरबाणी दा कीर्तन बख्शिश कीता उपरंत सिंह साहिब ज्ञानी गुरचरण सिंह जी मुख अरदासी सचखंड श्री हरिमंदर साहिब उन्होंने अरदास हुक्मनामा साहब की सेवा निभाई है। बहुत बहुत धन्यवाद साध संगत जीओ। 17 अगस्त नू भादरों संगरांद का दिहाड़ा आ रहा है। 15 अगस्त दिन शनिवार परसों नू 15 अगस्त नू काले दिन वजों मनाउंदियां भारती कौंसलेट दे बाहर शांतमय विरोध प्रदर्शन किया जाना है। 325 हाउस स्ट्रीट वैनकूवर विखे समा दोपहर दे 2 to 12 तक का है। 10 बजे अपने गुरद्वारा साहब तो बस चलेगी। वध तो वध संगतां हाजरियां भरन की कृपालता करन। 15 अगस्त नूं काले दिन वजों हर साल ही गुरु के सिख मनाउंदे ने। सिखां ने आजादी लै दित्ती पर खालसा जी आप गुलाम हो गए और बहुत ज्यादा पंजाब दी बर्बादी इन्हां ने कीती है ते कर रहे है। साध संगत जी इस करके 15 अगस्त नूं हर साल काले दिन वजों मनाया जांदा है सिखां वालों। परसों नूं दिन शनिवार भारत कौंसलेट 325 हाउस स्ट्रीट वैनकूवर विखे शांतमय विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वध तो वध पहुंचण की कृपालता करो। शाम नूं गुरबाणी पाठ बहुत समागम चल रहा है 7:30 to 9। 30 अगस्त नूं भोग पाए जाणगे। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज दा वचन है सिखां नूं, सिखो सुनो सीख है मेरी, बाणी पढ़ो शुद्ध गुर केरी, पढ़ै महात्म लह बिसाल, हालत पालत मैं होए निहाल, होए अशुद्ध पढ़िए शुद्ध कर, बिगड़ी वस्त सवार है जम कर। गुरसिखो शुद्ध गुरबाणी पढ़िया करो। शुद्ध गुरबाणी का फल बहुत ज्यादा है। लोग परलोक लोग सुखी परलोक सुहेले हो जाते ने। घर दियां विगड़िया हुई चीजा जिवें आपां तरतीब दे के सही कर लैने आ, इवें गुरबाणी का उचारण संथिया लैके आपां सही कर लेना चाहिए। गुरद्वारा साहब संथिया दिती जांदी है, तंती साजा नाल कीर्तन सिखाया जांदा है, गतका सिखाया जांदा है, गुरमुखी दियां पंजाबी दियां क्लासां लगाईआं जांदियां हन। इन्हां सेवावां तो आप जी जरूर लाहा प्राप्त करो। हुण बहुत ही सत्कारयोग ज्ञानी कुलदीप सिंह जी उस्ताद जी विद्यार्थी दमदमे टकसाल जिन्हां ते गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बेअंत कृपा है, साध संगत जी इन्हां तों हुण पवित्र हुक्मनामा साहिब जी दी कथा विचार सरवण करदे हां। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
2: वाहिगुरु साहिब जी।

लेकिन मैं अर्ज करांगा ये अपना अनुभव नहीं बनेगा। मैं दोहरावा, परमात्मा दे ज्ञान करके कोई मनुख परमात्मा दे मार्ग ते नहीं चलता। क्यों? जद परमात्मा मिलता है उदो ही परमात्मा का ज्ञान मिलता है, जद ज्ञान मिलता है उदो ही भगवान मिलता है, दोवें इकट्ठे मिलते ने, अलग अलग नहीं मिलते। थोड़े विचों अगर कोई अभ्यास करते होंगे तो जरूर गल पकड़ते चाहेंगे। कोई मनुख ऐसा कह सकता है धुप ते अज निकली है पर सूरज ते अज चढ़िया ही कोई नहीं? ये किस तरह हो सकता है? जे धुप निकली है तो सूरज भी चढ़े, जे रोशनी सही तो सूरज भी चढ़े। ते कोई आखे सूरज ते सामने दिखाई देंदा पे, चानना ते है ही कोई नहीं? ये किस तरह हो सकता है? सूरज है तो चानना है, चानना है तो सूरज है, ज्ञान है तो भगवान है, भगवान है तो ज्ञान है, दोवें इकट्ठे प्रकट होंदे, अलग अलग नहीं होंदे। ब्रह्म ज्ञान ये मिश्रित शब्द ने, अवस्था भी मिश्रित है, ब्रह्म ते ब्रह्म दा ज्ञान दोवें इकट्ठे प्रकट होंदे, सूरज ते सूरज दा चानना दोवें इकट्ठे प्रकट होंदे, अलग अलग नहीं प्रकट होंदे। सूरज अज चढ़िया ते चानना कल होवेगा, या चानना अज हो गया तो सूरज कल निकलेगा, ऐसा नहीं है। ब्रह्म अज मिल गया तो ज्ञान कल मिलेगा, या ज्ञान अज मिल गया तो ब्रह्म कल मिलेगा, ऐसा नहीं है। दोवें इकट्ठे मिलते हैं, दोवें इकट्ठे मिलते हैं। जद ब्रह्म दा ज्ञान ब्रह्म दे नाल ही मिलता है तो ब्रह्म दे मार्ग ते किस तरह चलिए? अक्षरी ज्ञान करके। ए अक्षरी ज्ञान मैं थानू सर्वन करा रहा, इस करके प्रेरणा मिलेगी। तो इस ते किधरे भरोसा बज जाए ते मनुख चल पवे, चले की उसका ध्यान। अगर एक जवान जवानी च ही उलझिया पे है ते कितना ही पाठ करता हो, कितना सत्संग करता हो, अजे ध्यान अगे नहीं चलिया। ये भी अर्ज कर दें, अजे सुरत अगे नहीं गई। अगांख उतरांग पिछा फेर ना मोड़ा, नानक सिंह अपराध अकाल मिल रहा तो दमे कट्ठे मिल रहे। जिसकी दृष्टि पहले काल ते पहुंच गई, बड़ा महान मनुख है। मनुख अपने विच जन्म नु वेखदा है, जीवन नु वेखदा है, मरण नु नहीं। ये भी मैं अर्ज कर दिया। पंजाब का एक छोटा जिहा कस्बा बुनियाना मंडी बठिंडे दे कोल, बादरों की संगरान सी ते प्रबंधकां ने मैनू कह दिता, ज्ञानी जी अज बादरों दे संगरान की कथा कर दो। हफ्ता मैं रहना सी, मैं ठीक है। तो उस संग्राम की कथा दे एक पंक्ति है पादरों दे महीने, पादों का मतलब है भादो, छिठे पै गए पानी दे ठंड हो गए, बरसात हो जाती है तो अपने कला गई गर्म, दो बादो है। हर महीने का नाम उसके सुभाव के मुताबिक रखा गया सी, बारह महीने के नाम बिकमी समत के मुताबिक भादो है। हुणे ठंड हुणे गर्मी, हुणे गर्मी हुणे ठंड, बादलों की छोटी छोटी बारिश होंदी रहती है, पांच मिनट हो गई, दो मिनट हो गई, फिर धुप निकलाई, गर्मी हुणे ठंड हुणे गर्मी बाद होए। कई मनुख भी बादलों की तरह आउंदे ने, गुरुद्वारे बैठे ने बिल्कुल ठंडे, शांत कर गए, बढ़तू पा दिता है, उबल गए, तप गए, हुणे बड़े आनंदमयी बैठे सन, हुणे चिंता तुर हो गए, हुणे बड़ा शांतमयी बैठा सी, हुणे क्रोधी हो गया, पाद होए। हुणे ते बड़ी परोपकार दी अंदर बिरतियां कंपियां कर दियां सन, हुण दुराचार, हुणे ते बड़ा मिठा बोल रहा सी, हुण बड़ा कुरख ते कौला, पाद होए। बहुते मनुख, बहुती मनुखता बादलों दी तरह,

मित्रंत अजंत सतरं दृणंत अनिक माया विस्तीरने आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगणे भरम।

0: वेदन पार ब्रह्म परमेश्वर आराधनानिक हर हर हरे।
1: मनुख दिया बुनियादी मूल कमजोरिया बिचों प्रबल कमजोरी अहंकार अहं मैं हां। जिन्ने चिर तक ये मैं रहती है ये अहं भाव रहता है उतने चिर तक ही जन्म ते मरण चलता रहता है। ये जन्म ते मरण का मूल है, ये जन्म ते मरण का कारण है। धन गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, हौमे कर्म कमाए हौमे एही बंदना फिर जौने पावे। हौमे दा स्वभाव है, मनुख जितने भी कर्म करता है अहंकार आशक, चाहे वो कर्म धार्मिक ने, चाहे वो कर्म सामाजिक ने, चाहे वो कर्म राजनैतिक ने, अहं मूल है, अहं मिश्रित हो जाता है हर कर्म में। और वो कर्म जो अहं आश्रित है जन्म का कारण बनता है, जन्म मरण का कारण बनता है, और वो अहं का बंधन फिर जन्म फिर मरण। इस तरह अहं जन्म ते मरण की बहुत ही लंबी यात्रा विच पा देता है, बहुत लंबे गेट विच पा देता है। धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज प्रमाण कर रहे हैं, हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा, हे पाप आत्मा अहंकार, तू जन्म ते मरण का मूल है। वख वख जीवों विच अपने अपने दोष पाए जाते हैं। जैसे असी वेखदे हां हाथी विच काम रोग प्रधान है, और पतंगे विच दृष्टि रोग, मच्छी विच रसना दा रोग, और इसी तरीके नाल भौरे विच नासका दा रोग। होमे रोग मानुख को दीना, काम रोग मैं गल बस कीना, दृष्ट रोग पच मुए पतंगा, नाद रोग खप गहे कुरंगा, हिरन्नो नाद दा कन्ना दा रोग। जो जो दीसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। ये रोग बंधन का कारण बनते ने, ये रोग दुख का कारण बनते ने, और मनुख दे सारे दुखों का मूल कारण अहंकार। अहंकार किधरे अस्थूल रूप धारण करता है, किधरे सूक्ष्म रूप, किधरे पदार्थों का अहंकार, किधरे धार्मिक कर्म जो परमात्मा के प्रति किए गए ने उसका अहंकार, किधरे इस जीवन का अहंकार, किधरे उस परम जीवन की प्राप्ति के जो साधन ने उन्हां दा अहंकार। मूल रूप विच ये अस्थूल अहंकार धन आश्रित होंदा है, जोवन जवानी स्वपन दे आधार से खड़ा होंदा है, और शक्ति सता ताकत इसके आधार पे खड़ा होता है। जो बन धन प्रभ ताक मद में अहनिस रहे दीवाना, दिन रात पागल की तरह घूम रहा है। जो बन दी मस्ती रिच, धन दी मस्ती रिच और सता दी मस्ती रिच। धन जेब दे चोवे या मन दी सोचनी दे चोवे, जोबन वंत होवे या जोबन दी चाह मन दे चोवे, सताधारी होवे या सता दा चिंतन अंदर चलदा होवे, दोहां हालतां च पागल हो जांदा है। सता पागल कर देंदी है, सता का चिंतन भी पगला देता है। जो बन पागल पंदी सीमा तक ले जाता है, पर जो बन का चिंतन भी पागलों वाली हालत बनाई रखता है। इसी तरीके नाल धन, धन जेब देच है, धन घर देच है या धन सोचा देच है, विचारा देच है, मनुख ते पागल होवेगा। इसका बहुत वड्डा पागलपन धन आश्रित है, जोबन आश्रित है और सता आश्रित है। तभी पातशाह फरमान कर रहे हैं, जोबन धन प्रभता कै मद में अहनिस रहे दीवाना, दिन रात पागल होया फिरदा है। इसे अहंकारी अपने आप नू महान समझदा है, दूसरे नू तुच्छ समझदा है। आपस को दी रग कर माने औरन को लग मात, मनसा बाचा कर्मना मैं देखे दोजक जात। हर एक नू छोटा समझदा है, चाहे अगला महान होवे चाहे स्वयं तुच्छ होवे, अपने आप नू महान समझदा है, उच्चा समझदा है, सब तो उच्चा समझदा है। ईरानी सूफी संत हाफिज फरमान कर देने, दर महफिले के खुर्शीद अंदर शुमार जर्रास्त, जिस दी महफिल दे खुर्शीद ए सूरज एक जर्रा है, एक निक्का जिया रेत दा जर्रा है। दर महफिले के खुर्शीद अंदर शुमार जर्रास्त, खुद रा बजुर्ग दीनम शर्ते अदब नवाशद। उस महफिल विच तू अपने आप नू आखे मैं वड्डा, मैं वड्डा, मैं महान हाँ, जिथे सूरज भी एक निक्के जिया जर्रे वर्गा है, इसकी भी कोई औकात नहीं। पर मनुख दी भुल, मनुख दा अज्ञान, और जितना प्रबल अज्ञानी होवेगा उतना अहंकारी होवेगा। एक उर्दू दा महान शायर इसनू एक होर ढंग नाल भी बयान कर देने, इल्म के जहूल से बेहतर है जहूल का इलम, मैंने ये दर्श पाया अपनी बसीरत से। ज्ञान दी मूर्खता दे नालों बेहतर है मूर्खता दा ज्ञान, इलम दी जहालत नालों चंगा है जहालत दा इलम। अगर थोड़ा बहुत कुछ समझे है, आलम होया है, विद्वान होया है, और कई गुणा उस तो वद अहंकार नाल भर गया है, तो अहंकार इस गल दा सबूत है जो इलम है वो अमल विच नहीं और ए अहंकार मूर्खता ते खड़ा है। इलम के जहूल से बेहतर है जहूल का इलम, ज्ञान भी मूर्खता दे नालों बेहतर है मूर्खता का ज्ञान। अहंकार अज्ञान ते खड़ा होता है, ज्ञानी भी अज्ञानी समझो अगर अहंकारी है। भगत सरमौर श्री रविदास जी महाराज बड़ा सुंदर फरमान कर रहे हैं।

सन्यासी ज्ञानी गुणी सूर हम दाते ए बुद्ध कभे ननासी कह रविदास सभे नहीं समझसे भूल परे जैसे बोरे क्योंकि सारे भूल के पागल हुए फिर देने कौन हम बड़ कव मैं बहुत वड्डा कवि मैं बहुत वड्डा कवि मेरी कविता महान बस यही जहालत ले फिर दी है कुलीन हम पंडित मेरी कुल बहुत उच्ची तो मैं उच्चा मैं पंडित इस वास्ते मैं महान हम बड कव कुलीन हम पंडित हम जोगी सन्यासी मैं बहुत वड्डा जोगी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा सन्यासी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा ज्ञानी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा ज्ञानी गुणी सूर हम दाते ए बुद्ध कवे नानासी मैं बहुत वड्डा सूरवीर मैं बहुत वड्डा दानी कहिंदे ने अहंकार अक्सर गुणा ते ही खड़ा हुंदा है और गुणवान ही ज्यादा अहंकारी हुंदा है क्योंकि औगुणा दे आसरे ते अहंकार नूं अस्थूल रूप धारण दा मौका नहीं मिलदा एक गल वखरी है कि मूरख गुण ना होंदिया भी अहंकार विच जलदा है पर उसका अहंकार इतना बोझल नहीं आता उसनों इतना बोझल नहीं करता एक गल वखरी है कि वह अहंकार मूर्खता ते खड़ा है अवगुणा ते खड़ा है नानक ते नर असल खर जो बिन गुण गर्व करन इक ना नाद ना वेद इकद नू न किसी प्रकार की विद्या न संगीत दा ज्ञान गे रस रस कस ना जानन इक ना सुरत ना सिद्ध अक्कल सिर अक्षर का भयो न लहन अक्षर दा कोई बोध नहीं अकल दे तल ते जी नहीं रहा संगीत दा कोई बोध नहीं किसे धर्म ग्रंथ दा कोई ज्ञान नहीं लेकिन फिर भी अहंकार नानक ते नर असल खर जो बिन गुण गर्व करन असली खोते ने अहंकार भी पंड चुकी कर देने पर बड़ा प्रबल अस्थूल अहंकार प्रगट अहंकार ते गुणा ते खड़ा हुंदा और अहंकारी दिया अखां अहंकारी दा मस्तक अहंकारी दी चाल स्पष्ट रूप देच अहंकार दी प्रदर्शनी कर दी है भगत कबीर कहंदे ने चलत कत टेढ़े टेढ़े अहंकारी सीधा चल ही नहीं सकता अगर सीधा चले तो उसकी चाल का पता नहीं चलता टेढ़ा चलता है ताकि लोगों दी निगाह मेरे ते आवन निर्माण मनुख चाहता है मैं परमात्मा की निगाह थले आ जावा अहंकारी चाहता है सारियां दी निगाह मेरे ते आवन सब मैनू ही देखन चलत कत टेढ़े टेढ़े अस्त चरम बिस्टा के मुंडे दुर्गंध ही के बेड़े तू है जी हड्डियां हड्डियां देते चढ़े होया मांस मांस देते चढ़ी हुई चर्बी और चर्बी देते लिपटी हुई खलड़ी और किया तू हड्डियां का मान जोबन जवानी का मान हड्डियां का मान मांस का मान मिंज दा मान और खलड़ी दा मान इस तो अलावा और है कि एक आया
कि इतनी नापाक है, कोई भी पवित्र चीज इस नल छू जाए मैली हो जाती। और इस काया दा अहंकार धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज प्रमाण कर देने, कर्पूर बहुत सुगंधा परश मानक देहं मलिनं मजारु दर दुर्गंधा नानक अथ गर्वेण अज्ञानड़ो। कपूर ते चंदन जैसियां फुल्ला जैसियां पवित्र वस्तुआं मनुखी तन नाल छूंदिया स्पर्श करदिया मैलियां हो जांदियां ने। मजारु दर दुर्गंधा नानक अथ गर्वेण अज्ञानड़ो है कि दुर्गंध खून मिंड मांस कलड़ी। अज्ञानी एवं तन का अहंकार करता है, जो बंदा अहंकार करता है फिर धन का अहंकार, धनवंता होए क्या को गर्वे जहां सब कुछ तिसका दिया दरवे। पुरखा ईश्वर वसीला ना बने धन कितने उस दे वसाहिल नाली सब कुछ प्राप्त होता है। और सब तो वड्डा वसीला है ए तन, और तन उसकी देन है, ये दिमाग उसकी देन है, और ये तन ते मन दे आखरे ते तू धन इकट्ठा कर लिया तो वसीला ते प्रभु है, वसीला ते परमात्मा है। पर धन दा अहंकार सता प्रभता इसका अहंकार अगह चलिए ता अहंकार नू बैठन वास्ते कोई गुणा दा सिंघासन चाहिए। दान दा अहंकार, ज्ञान दा अहंकार, सेवा दा अहंकार बड़े नवे तो नवे सिंघासन अहंकार अपने बैठने लिए बनाई जाता है। और गुणा के आसरे से बैठ के एक प्रसन्न बड़ा होता है, क्योंकि जगत तो जस मिलता है, जगत तो माण मिलता है, वो माण इसके अहंकार नू होर वधांदा है, होर वधांदा है। देखने विच आया है धन है तो धन ते अहंकार बैठ गया है, फिर धन दा त्याग है तो त्याग ते अहंकार खड़ा हो गया है। हुण त्याग दा अहंकार सता कोल है, सता दा अहंकार सता दा त्याग कर देता है, हुण त्याग दा अहंकार। ऐसा अक्सर देखण नूं मिलदा है, पहले जो कोल है उसका अहंकार, फिर जो कोल है उसका त्याग कीता है, उस त्याग का अहंकार। अहंकार नवे तो नवे रस्ते लगता है, और अहंकार तो बचना औखा। जिहड़ा सिंघासन भी असी निरंकार नूं बिठाण लई बनाने हां अहंकार बैठ जांदा है। दान दा सिंघासन बड़ा सोहना बनाया सी, भगवान आके बैठे, निरंकार आके बैठे, अहंकार आके बैठ जांदा। सेवा कर रहे सी ताकि सेवा दे सिंघासन ते प्रभु आके बैठे, नहीं अहंकार आके बैठ गया। सिमरन माला दे राहीं रसना दे नाल जप दे राही आरंभ कीता, ताकि ए जप ए माला दा फिरना प्रभु प्राप्ति दा साधन बन जाए, पर इससे भी अहंकार खड़ा हो गया। अहंकारी नू दूसरे तुच्छ प्रतीत आउंदे ने, अहंकारी अपने आप नू महान समझदा है, और कई दफा अहंकार इतनी चरम सीमा ते पहुंचता है ओदी दृष्टि च
निरंकार भी कुछ नहीं, वो स्वयं दावा कर उठता है मैं ही निरंकार दावा कीता सी हरनाथ कुछ ने, मैं परमात्मा कौन होता है परमात्मा, दावा कीता सी नमरूद ने मैं हाँ खुदा कौन होता है खुदा, अहंकारी अपने तो वड्डा किसी ने भी मनन नु तैयार नहीं, इस वास्ते अहंकारी का सिर झुकदा ही नहीं झुकदा ही नहीं, आकड़िया रहिंदा सिर, और उसके सामने माता छोटी है पिता छोटा है गुरु छोटा है प्रभु छोटा है कोई भी वड्डा नहीं, सिर्फ वो खुद वड्डा बनता है और वड्डा होके दिखाण दी कोशिश करता है, सारी भज दौड़ अहंकार लई है निरंकार लई नहीं, किस तरह मैं सारे लोगों दी निगाहों का मरकज बन जावा केंद्र बन जावा, हर एक की निगाह मेरे से टिक है और हर एक का माण मैं हो जावा मेरे से माण करन, और इस तरह मेरा अहंकार शिखर ते पहुंचे, सारी भज दौड़ अहंकार दिए, इंज कह लईए यात्रावां ते दो ही ने अहंकार दी यात्रा निरंकार दी यात्रा, निरंकार दी यात्रा आरंभ होंदी है तू है तू है तू है तू है, अहंकार दी यात्रा आरंभ होंदी है मैं हां मैं हां मैं हां मैं हां मैं हां, एक जन्म मरण का कारण बन जाती है तू है तू है तू है, एक जन्म मरण नु मिटा के प्रभु का रूप बना देती है, बूंद सागर दे लीन हो जाती है, ईश्वर का रूप हो जाता है मनुख, भगत कबीर कहते हैं

जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू है। इस वृत्ति ने, इस जप ने तेरा ही रूप बना दिया। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पछानी। तू है, इसने भगवान का रूप बना लेता। मैं हां, ये शैतान का रूप बना देता। शैतान ही है वो जिसका सब कुछ अहंकार आश्रित खड़ा है। भगवान का रूप है जिसके रोम रोम देच, जिदियां सारिया क्रियावां देच भगवती प्रदर्शित, भगवती नुमाइश हो रही है, परमात्मा ही प्रकट हो रहे हैं। श्री रविदास सही कह रहे हैं, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, जब मैं सी तू नहीं सी, हुण तू है मैं नहीं, ते तू ते मैं दोवें इको सिंघासन ते नहीं बैठ सकते। महाराज की बाणी का फरमान, हौमें नावे नाल विरोध है, दोए न वसे इक ठाए। ते मैं ते तू दोवें कठे नहीं रह सकते, या तू है या मैं हां। अहंकारी की सारी साधना है मैं हां, उदी सारी भज दौड़, उदी सारी किरिया, उदी सारी तपस्या, उदी सारी मेहनत, किस कारण हो रही है? मैं पर विनम्र मनुख दा, संत दा सब कुछ तू हासिल है, तू ही है। उठे मैं भी कोई चिंगारी नहीं रहती जिस विच गुण भस्म हो जाते हैं। बस तू ही। एक आलम का कहना है, अज रहा चुनार कि सलामत न कुनत, इस ढंग नाल चल रस्ते देच कि किसे दा सिर मजबूरन ना झुके, इतना आकर के ना चल। बा खलक चुना जी के कयामत न कुनद, खलकत बिच इस ढंग नाल रह कि तेरे रहन दे नाल कयामत ना हो। दर मस्जिद गर रवि के चुना जाओ के तोरा, दर पेश न खुआनद और इमामद न कुनद, कि किधरे इबादत करनु तेरा जी करे तो निमाजियां दे पिछे होके नमाज पढ़ी, किधरे अग्गे होके नहीं। ऐसा ना हो कि तेरे अंदर इमाम बनन दा चाव पैदा हो जाए और नमाज पढ़दियां मस्जिद दे भी तू कह उठे कि मैं ही सब तो वड्डा। अक्सर धार्मिक मंदिरां दे भी ते लोकी प्रधानगी लभदे ने कि प्रधान ते परमात्मा है, या फिर जिसका मिट गया सारा अहंकार वो प्रधान हो सकता है। सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटे अभमान, जो संगत दे चरणा दी खाक हो गया मस्तक दा तिलक ते फिर ओही बनता है। पर जो पहले ही मस्तक दे ते असवार होके बैठा है, शायद उसनु मखलूक दे कदमा दे भी जो है खाना मिले, पर अहंकारी ते सिर ते बैठने की कोशिश करता है। अहंकारियां दे आसन सिंघासन लोगां दे सिर दे उत्ते ही होंदे हैं। सारी राजनीति, सारी सता अहंकार आश्रित है और अहंकारी सिरां ते ही ते बैठता है। कई दफा सिर हिल जाने ने ये थले गिरदा है। इस वास्ते कहना, गरूर का सर नीचा, आखिर जो लोगों के सिर झुकाना चाहता है एक दिन इसका सिर नीवा होके रह जाता है। अहंकारी
ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਅਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਬਿਠਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਠਣਾ ਸੀ ਉਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਆਪ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

सारी धार्मिक साधना हाथी का इशनान बन के रह जाती है। सारे धर्म नो अहंकार अधर्म विच बदल के रख देता है और इस तरह अहंकार तो पैदा ए अधर्म जन्म ते मरण का कारण बनता है। हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा, हे पापात्मा अहंकार तू जन्म ते मरण का मूल है। हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा नितरं तजन्त सतरं दृढ़न्त अनेक माया विस्थिरने। यह अहंकार तेनू दुश्मन बनाने ही आंदे ने, मित्र बनाने की तेनू जाच नहीं। अहंकारी के मुंह ना निकलता, अहंकारी हां नहीं कर सकता। जब सारा माहौल ही ऐसा होवे और हां कहने की सहूलियत भी होवे, कुछ बिगड़ना भी ना होवे, तां भी हां नहीं कहेगा, ना ना। जितनी ताकत ज्यादा होवे उतनी जबान ते आ जांदा है ना, नहीं ना नहीं। कोई कम है और अक्सर कम कार लई लोकी सरकारी दफ्तरां दे जांदे ने। जितनी जिस कोल समर्था है ताकत है उस हिसाब नाल ही वो ना करता है, ना करके दसना चाहता है मैं तैनू रोक सकदा, मैं तेरे कम नू रोक सकदा। अहंकार इस महीने विच कि भारत बहुत अहंकारी देश हो गया है। ना ना ना, हां कहना ही भुल गया है। हां कहने विच इनू अपना छोटापन प्रतीत होंदा है। जायज गल भी नौकर ने कह दिती है, जायज मंग भी एक नौकर ने मंगी है, तां भी मालक कहिंदा है ना

अरारद निहाले दुश्मनी बरकुन तिरंजो बेशुमार अरद। दोस्ती दा बूटाला मिलाप दा बूटाला जी तो खुदा दा मिलाप चाहना है जी किधरे भुलेखे नाल तो दुश्मनी दा बूटा ला भी बैठा है इसनों आज ही जड़ों पुट दे सिवाय दुखां दे सोल तो इस बूटे नूं होर कुछ भी नहीं लगता। अमृत फल खाना चाहना है दोस्ती दा बूटा ला। भगत आत्मदर्शी मनुख ते सारे जहान नूं मित्र बना लैंदा है। सबको उम्मीद हम आपन की ना हम सब ना के साजन। किस तरह सारी कायनात नु उसने मित्र बना लिया पशु पक्षियां तक नु जड़ चेतन सबनु अपना मित्र बना लिया। जिंदगी तो बड़ी छोटी है दुनिया बड़ी वड्डी है सारिया नु मित्र बनाया आखिर किस तरीके नाल। गुरबाणी ढंग दसदी है एक सज्जन सब सजना एक वैरी सब बात। जब उस एक नु सज्जन बना लैंदा है ते एक नाल सज्जनता दा जब रिश्ता जुड़दा है तो सारी अनेकता उस एक दे आसरे ते खड़ी है अनेकता भी सारी सज्जन बन के रह जांदी है। जीवन धन हो जांदा है। कहिंदे मित्रां विच जीवना स्वर्ग विच जीवना है दुश्मनां विच जीना नरक विच जीवना है। नरक ही भोग रहे ने ओह जो कहिंदे गलियां दे कख भी वैरी ने पर स्वर्ग दे चवो ने जिन्होंने शैतान नु भी मित्र बना लिया दुष्टां नु भी मित्र बना लिया। सब मित्र सबको उम्मीद हम आपन की ना पर ए युगत अहंकारी दे कोल नहीं आउंदे। अहंकारी जे अस्थूल ढंग नाल नहीं अगर वो धार्मिक है तो सूक्ष्म ढंग नाल चोट पहुंचावेगा। बड़ी सुंदर एक गाथा है। एक संत बैरागी जंगल विच कुटिया बना साधना विच लीन है कि साधना सारी सिर्फ अहंकार नूं मारन वास्ते है और जिस दिन अहंकार मरदा है निरंकार प्रगट होंदा है। अहंकार जितने चिर तक है जन्म ते मरण चलता है और जैसे निरंकार प्रगट होंदा है जन्म मरण मिट जाता है। सारा साधना विच लीन ये योगी ये संत। एक राजा आया दर्शना लई तपस्या साधना दी बड़ी दूर दूर तक धुम पई। बहुत तपीश्वर है बहुत जपीश्वर है बड़ा संजमी है। राजा दर्शना लई आया है दर्शन कर राजा प्रसन्न होया है। उसने एक बड़ी कीमती मोतियां नाल जड़त पोशाक चोला भेंट कीता। पानी साधु कहन लगा हुण असी इस तरह दे चोले पहनना छड़ दिता है असी ते तन दिते सिर्फ कमली धारण कर रहे हैं। पर राजा कहन लगा आखिर मैं खाली हथ किस तरह जो है आप दे दर्शन करा ये नजराना है ये भेंट है चलो नहीं पाना आप रख लो दे देना किसे नूं। राजा ये नजराना रख के चला गया। कुछ दिना बाद इस त्यागी वैरागी साधु दा एक मित्र बूढ़ा मित्र बचपन दा दोस्त और वो भी साधु से वो भी तपस्या कर रहा से मिलन ले आया है। लालबन 10 मील दी वाट

के गर्दन पर छुरी कसा बने। कसाई दे छुरे हेठ आ गया, ने जबा कर देता, सिर वट देता। गोश्त हड्डी और चमड़ा जो था जिसमें जार में, कुछ लूटा कुछ पिस गया कुछ बिक गया बाजार में। रह गई ताते फिकत मैं

लिए आंध्रा रह गया, सुरदतियां गया, बाकी तो सब कुछ कम आ गया, खल कम आ गई, मांस कम आ गया, हड्डियां भी पिस गई कम विच वर्दियां, केवल आंद्रा बच गई। ये नदाफ चुक के ले गया जो रूई पिंज देने धुनकी दे नाल, और धुनकी जिहड़ी तंग लाई जाती है वो बकरे की आंत आउंदी है, अंदर आउंदी है। ले गया नदाफ से धुन की बनाने के लिए, ये आंद्रा ही रह गई सुन।

नदा फुसे धुन की बनाने के लिए, जरब की सोटों की जिस दम तांत घबराने लगी। उस तांत देते हो, उस आंत देते हो, नदाफ जोरदार सोटा मारदा है, बस उस नाली रूह पिंजी जाती है। जरब की सोटों की जिस दम तांत घबराने लगी, मैं के बदले तू ही तू की बस सदा आने लगी। हुन उस आंत बेचो सोटे की जरब नाल निकल रहा है, तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही। खुशी इतनी कुर्बानी करे, साधना करे कि साधना विच लीन मनुखां दी कदमां नूं खाक दे, अपने मस्तक नूं रगड़े, श्वास श्वास वाहिगुरू वाहिगुरू जपे, तां ही ये मैं तुम विच बदल दिए, जीवन धन धन हो जांदा है, महान हो जांदा है। अहंकारी उस तक अपनी करेगा, निंदा दूसरे दी करेगा। अगर दूसरा वड्डा है तो अहंकारी लाजमी निंदा करेगा, अहंकारी निंदक हो ही जाएगा। उसे प्रसन्न होता है, अपनी उपमा सुन के उपमा होण लग पई है दूजियां दी, तीसरे दी, मित्र दी, तो हुण इस कोल होंदी है निंदा। निंदा का मतलब की है? गल नूं छुटियाना। और अक्सर मनुख उसे दी ही निंदा करता है जो किसे गल विच उस नालों अगे होवे, गुण विच, कला विच, ज्ञान विच, शील संजम विच, या फिर प्रभु दी बंदगी विच, या संसारी तल ते ले लो सता विच, धन विच, स्वप्न विच, किसे भी पक्ष तों जो अगे है, अहंकारी उसकी तारीफ नहीं कर सकता, अहंकारी सच नूं सच नहीं कहेगा, अहंकारी निंदा करेगा। और अहंकारी बड़ा प्रबल निंदक होता है, छुटियाण की कोशिश करता है, घटाण की कोशिश करता है। भगत नामदेव जी उन्हें भी तपस्या इतनी इतनी, परमात्मा उन्हें सन्मुख होया है, प्रभु सामने होया है, लेकिन हंकारी ब्राह्मणा ने मार मार के मंदिर चो कढ़िया है और मंदिर दे पिछवाड़े बिठा देता है, मारिया कढ़िया ये बेचारा मंदिर दे पिछे बैठ गया। पहले ते मूर्ति दे सन्मुख सी, मूर्ति नामदेव दे सन्मुख सी, पर हुण पिछे। पातशाह दी बाणी कहंदी है, अहंकारियां निंदकां पिछ गए नामदेव मुख लाया। अहंकारी निंदक होंदा है और निंदक ते अहंकारी दी तरफ परमात्मा दी हमेशा पिट होंदी है। जो गुणा दी सिफ तो सलाह करदा है वो ते परमात्मा दी सिफ तो सलाह करदा है। गुण किसे मनुख दे च वी प्रगट होए ने तो गुण ते सारे परमात्मा दे ने। गुणा दी तारीफ परमात्मा दी तारीफ है, पर वो ते निंदा करदा है, गुणा दी निंदा करदा है, क्योंकि अहंकारी है तो परमात्मा की पिट हो जाती है उसकी तरफ। और जिस मनुख की तरफ परमात्मा की पिट हो गई है सब की पिट हो जाती है। और अहंकारी बहुत दुखां दे दलदल दे जाके फसदा है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इन फरमान करते हैं,
आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगणे। ऐ अहंकार तेरे करके ते जीव जमदे ने मरदे ने आंदे ने जांदे ने दुख भोगदे ने सुख भोगदे ने थक जांदे ने टुट जांदे ने। ऐ अहंकार तू ते तोड़ के रख देना कईयां नूं। ब्रह्म भयान उदयान रमण महाबिकट असाद रोगणे। ये बड़ा असाद रोग है। अहंकारी उसके हालात ऐसे बन जाते हैं जैसे भयानक जंगल उद्यान बेच कोई रमण कर रहा हो भ्रमण कर रहा हो। क्योंकि अहंकारी दे गूढ़े मित्र नहीं रह जाते उस तो सब दूर हो जाते हैं और अहंकारी कल्ला रह जाता है और ऐसा रह जाता है जैसे उद्यान बेच भयानक जंगल बेच मनुख तनहा रह गया हो। असाध रोग है। किसी वैद्य को इसकी दवाई नहीं है कोई इलाज नहीं है। तो इस श्लोक की अखीरली पंक्ति विच धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इन फरमान कर देने वैदं पार ब्रह्म परमेश्वर आराधनानक हर हर हरे। है देव है हकीम कौन परमात्मा केड़ी दवाई है उसके कोल। बस परमात्मा का नाम ही दवाई है और ये दवाई किधरों बारों नहीं लानी किधरों बारों नहीं लभनी। ये दवाई भी अंदर पई है इस तरह जैसे के अहंकार रोग अंदर पे है। हमें दीर्घ रोग है दारू भी इसमें है। पर इसका मतलब नहीं दारू नहीं है। अहंकार अंदर है औषधि भी अंदरों है। मैं अंदरों निकल रहे है हूं जी किधरे अंदरों निकले तू इतनी औषधि होगी। मैं इतने रोग हो गया। ये रोग ते औषधि दोवे मनुख दे अंदर ने। इसकी मर्जी है रोग नू वधाना है कि औषधि नाल इस रोग नू घटाना है ते मिटाना है। मैं अंदरों निकलेगा मेरा धन मेरी कुल मेरा रूप मेरी प्रभुता मेरी जात मेरा कुल अंदरों ही निकलेगा। तू है कुछ भी नहीं मेरा। मैं ना ही प्रभ सब किछ तेरा ईघे निर्गुण उगे सरगुण केल करत विच स्वामी मेरा। ये जो तेरा तेरा है ये भी अंदरों निकलेगा और ये जो मेरा मेरा है ये भी अंदरों निकलेगा। इस वास्ते रोग भी अंदर है दवाई भी अंदर है। सत्संग इस वास्ते है और गुरु अर्जन देव जी महाराज का ये फरमान ये वाक प्रेरणा दे रहा है। ये रोग अंदर है तो वैद्य भी अंदर बैठा है औषधि भी अंदर है। तू उस औषधि का सेवन कर कह सब कुछ तू ही है। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु तू ही है। जितना कहता जाएगा उतना मैं मिटता जाएगा और जैसे अहंकार पूर्ण तौर पर मिटेगा वैसे निरंकार पूर्ण तौर पर प्रकट हो जाएगा और तू निरंकार का रूप हो जाएगा ईश्वर का रूप हो जाएगा। गुर कृपा जय नरको कीनी ते ए जुगत पछानी
ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

तरल मास है, कहते तरल मास है, आखिर मास का निचोड़ है और की है, नहीं पीते, बड़ा परहेज कर देना। मुख्तसर मैं अर्ज करा, तुलसी कहता है खाण देख भी सहमति होवे, ये नहीं एक आखे मेरा धर्म इजाजत देंदा इस खाने नो, एक आखे मेरा नहीं। आसा इष्ट उपासना खान पान पैरान, मैं ईसाई मिशनरी देखे ने चर्च देच भी शराब पी लेंदे ने, उंज मैनू नहीं पता सी, रोचेस्टर इंग्लैंड दा एक शहर है, गुरुद्वारा ते चर्च आमने सामने ने, ते ईसाई जरा खुले सुभा दे आंदे ने, क्रिश्चन गुरुद्वारे आ जांदे सन, पादरी भी आ जांदा सी। एक दिन मैनू कह गए वे 10-15 मिनट आके बोलिया, ते मैं उन्होंने कह मेरी इंग्लिश बहुत ढीली मठी है, कहने लगे नहीं मैं अंबाले रहा, किधरे अंबाले चर्च दिच रहा होना, अंग्रेजा के राज के समय बुजुर्ग है, कहिंदा मैनू हिंदी आउंदी होर बथेरियां नूं आउंदी, तुसी उर्दू च बोलना हिंदी च बोलना, मैं कहा चलो फिर ठीक है काम चल जाएगा। ये खुले सुभा दे आउंदे ने, इन्हां दा सिलसिला थोड़ा जिहा फराग दिली वाला है, बर्दाश्त जो है कर देने, पर मैं देख के हैरान हो गया, चर्च दे अंदर बार सी बनी हुई, पी रहे सन, हद हो गई, इस्लाम हराम कहिंदा है, गुरबाणी कहिंदी है जिस जित पीते मत दूर होए बरल पवे विच आए। मुख्तसर मैं अर्ज करा, तुलसी कहिंदा है खाने विच भी सहमति होवे पीण विच भी सहमति होवे, ए नहीं एक आखे नहीं ये दुध अमृत है, एक आखे नहीं मास है नहीं पीना, एक मास खाई दा एक मास पीना है, मास पीना भी है मास खाना भी है। खान पान पहरान ते पहनन देच भी सहमति होवे, पहरावा एक होवे, ये छे गल्लां आपस देच मेल खान ते मित्रता हो सकती है वरना नहीं। तुलसी दे इस सलोक दे मुताबक ते ए मित्रता रूहे जमीन ते हो ही नहीं सकती, सारी दुनिया दा खाना इस एक किस तरह करिए, भारत दा खाना ही एक नहीं है, बंगाली कुछ होर खांदे ने, असामी कुछ होर खांदे ने, पंजाबियां दा होर खाना है, कश्मीरियां दा होर है, गुजरातियां दा होर है। पिछले दिन ही जब 300 साल खालसा साजना दिवस मनाया गया सी, ते दास दी सेवा श्रोमणी कमेटी दी तरफों सारे भारत दे वड्डे वड्डे शहर खास करके सूबियां दियां जिहड़ियां राजधानियां सन उन्हां दी सी, जथेदार साहब भी नाल सन, 4-5 जथे और 4-5 विद्वान पहुंचे सी गांधी धाम गुजरात दे, उत्थे लंगर दी मंग कर ली सी एक गुजराती सज्जन ने, भी लंगर मैं बनाना है मैनू इजाजत दे, तो सिंह सभा ने मंग लिया, ठीक है श्रद्धा नाल कहिंदा पिया ते चलो ये बनावे, तो अपने लांगरी भी गुजराती ले आया सी। दीवान दी समाप्ति हुई, पंगतां लगियां, अखीर दे जाके दास बैठा सी नाल होर साथी, ते साग सब्जियां जिहड़ियां अग्गे रखियां गईयां ना दाल मिठी सी, मैं कि हद हो गई इन्हां कोल लूण दी थां ते चीनी पै गई, ते मैनूं उत्थों दे सिकत्तर साहब कहण लगे नहीं गहनी जी ये दाल दे च मिठा ही पांदे ने गुड़ पांदे ने, हुण कोई होर सूबा नहीं पांदा ये पांदे ने, ये ते दाल भी मिठी बनांदे ने, नमक भी पाणगे रज के गुड़ भी पा छड्डदे ने, सारे भारत का खाना एक नहीं है, गुजरातियां का खाना कुछ होर है, मराठे कुछ होर खांदे ने, तमिल कुछ होर खांदे ने, कन्नड़ कुछ होर खांदे ने, तेलुगु कुछ होर खांदे ने, राजस्थानियां का खाना कुछ होर है, पहले तो सारे भारत का खाना एक नहीं है, सारी दुनिया का खाना एक किवें करांगे, फिर सारी दुनिया दीयां इच्छावां घर दे चार बच्चे होंदे ने उहदी मुख्तलिफ राय होंदी है, वख-वख इच्छा होंदी है, खाण दी सहमति पीण दी सहमति इच्छा एक। गुरु नानक ने एक नुकता बयान किया है, मुख्तसर मैं थोड़े सामने रखा, एक वस्त बूझे तो होवें पाक, बिन बूझे तू सदा ना पाक, इष्ट एक होना चाहिए, कोई गल नहीं, खाना एक नहीं है तो कोई गल नहीं, पीना एक नहीं है तो कोई गल